बातिन में मेरे या रब बस जाए याद तेरी, हर दम रहे हुजूरी, दिल हो मकाम तेरा, मुनिस हो मेरी जान की, फिक्रे मदाम तेरी, हमदम हो मेरे दिल का, फिक्रे दवाम तेरा।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।

दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल। दर्द दिल मीन्स लव ऑफ अल्लाह ताला एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द हार्ट। गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, गैर से बिल्कुल ही उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखो जिधर, तू ही तू आए नजर देखो जिधर।

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक़ ग़ज़ब का है उसको अमान दे।